0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। परिस्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा कुछ हद तक तुम्हारे हाथ में है, और जिसकी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स उसके हाथ में होती है, एक दिन हर चीज उसके हाथ में आ जाती है। हमेशा हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप क्या रिएक्ट करेंगे ये आपके हाथ में होना चाहिए।

0: कथा शनिदेव की। सुनिए हर शनिवार सुबह 6 बजे से कथा शनिदेव की। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ कथा शनिदेव की। वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: कथा शनि देव की। सुनिए हर शनिवार सुबह 6 बजे से कथा शनि देव की। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ कथा शनि देव की। वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। शिवाजी महाराज की रणनीतिक सोच से प्रेरित एक विचार। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, सही लड़ाई चुनना भी जरूरी है। अपनी ऊर्जा, हर बहस, हर इंसान और हर समस्या पर खर्च मत करो। हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। आपके पास आपका समय और ऊर्जा कब, कहां और कितना खर्च करना है, ये आप तय करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: कथा शनिदेव की। सुनिए हर शनिवार सुबह 6 बजे से कथा शनिदेव की, सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, वास्तु कृष्णा के साथ कथा शनिदेव की। वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक प्रसिद्ध सोच। समस्या को उसी सोच से हल नहीं किया जा सकता जिसने उसे पैदा किया। अगर जिंदगी बार बार वही परिणाम दे रही है तो शायद मेहनत कम नहीं, सोच का तरीका गलत हो सकता है। यानी आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हो सकता है मंजिल तो बिल्कुल ठीक हो, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो। तो अपनी सोच में इतना लचीलापन हमको हमेशा रखना चाहिए कि उसे ठीक करने पर हमें दिक्कत ना हो। उसे ठीक करने के लिए हमें हमेशा नई सोच को अपनाना चाहिए। इंप्रूवमेंट के लिए खुली खिड़की रखनी ही चाहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। कबीर दास जी का एक भाव जो हमें बहुत समझना चाहिए, कुछ बुरा देखने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला, जब खुद को देखा तो सबसे बड़ी कमी खुद में मिली। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर हम खुद में कमियां देखना शुरू करते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट की बात है। अगर आप अपनी कमी को देखेंगे तो फिर उसे सुधारेंगे भी, उसे सुधारेंगे तो जिंदगी आप ही की सुधरेगी। दुनिया बदलने से पहले अपनी कमजोरियों की सूची बनाओ और उनको ठीक कर दो, दुनिया तभी बदली जा सकती है।

0: कथा शनि देव की। सुनिए हर शनिवार सुबह 6 बजे से कथा शनि देव की, सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ कथा शनि देव की। वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन गिरकर फिर खड़ा होना उससे भी ज्यादा बड़ा गुण है। जिंदगी आपको कितनी भी बार गिराती हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितनी बार उठते हो, बस यही आपकी पहचान बन जाती है। जितनी भी बार आप किसी भी मैटर में फेल हुए हों, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, यही आपके हाथ में है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मातरम, द आर्ट ऑफ वॉर का सार। सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें युद्ध करना ही ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हर दुश्मन को हराना जरूरी नहीं। कभी कभी उससे आगे निकल जाना ही जीत होती है। अगर आप छोटी मोटी परेशानियों में, छोटे मोटे दुश्मनों में, छोटी मोटी व्यवस्थाओं में ही फंसे रह जाएंगे तो बड़ी मंजिलों को कब तय करेंगे दोस्तों। कि सबसे बड़ी जीत हर युद्ध को जीतने में नहीं, कभी कभी कुछ बातों को, कुछ लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: कथा शनिदेव की। सुनिए हर शनिवार सुबह 6 बजे से कथा शनिदेव की। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ कथा शनिदेव की। वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जय हिंद, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, राष्ट्र चेतना सुभारती आजाद हिंद रेडियो की ये खास प्रस्तुति है। राष्ट्र चेतना एक ऐसा ऑडियो बुक शो, एक ऐसी वैचारिक यात्रा जो जीवन को बदल सकती है, जहां आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि विचारों को जागृत भी करती है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक ऐसे विशेष वैचारिक श्रृंखला को, एक ऐसा ऑडियो बुक शो जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं होगा बल्कि राष्ट्र, संस्कृति, चरित्र और चेतना की एक जीवंत यात्रा होगा। राष्ट्र चेतना

0: सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: भारत केवल एक भूभाग नहीं है, भारत एक भावना है, एक संस्कार है, एक चेतना है। वो चेतना जिसने कभी पूरे विश्व को ज्ञान दिया, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए। वो चेतना जिसने दुनिया को कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन आज क्या हम उसी चेतना से जुड़े हुए हैं? क्या हमारी नई पीढ़ी अपने संस्कारों, अपने कर्तव्यों, अपने राष्ट्रीय चरित्र और अपनी सभ्यता को समझ पा रहे हैं? आज मोबाइल है, तकनीक है, सुविधाएं, AI भी है, लेकिन क्या भीतर से हम उतने ही मजबूत हैं? क्या इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम लेकर आए हैं ये विशेष कड़ी। ये कार्यक्रम आधारित है प्रख्यात शिक्षाविद, समाज चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। केवल एक चिकित्सक नहीं बल्कि एक समाज और राष्ट्र की चेतना को समझने वाले एक कर्मयोगी हैं। एक ओर वे चिकित्सा सेवाओं से लोगों का जीवन स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं, तो दूसरी ओर शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से देश के भविष्य को दिशा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनकी पुस्तक है राष्ट्र की अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमारे सुभारती आजाद हिंद रेडियो को ये नारा भी उन्होंने दिया कि देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश होना चाहिए। ये पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए लिखी गई है। इस श्रृंखला में हम इसी विषय में बात करेंगे, भारत और भारतीय संस्कृति की, राष्ट्रीय चरित्र की, माता पिता और गुरुओं के सम्मान की, व्यवहार, अनुशासन और संस्कारों की, योग, ध्यान, स्वास्थ्य की, पर्यावरण, यातायात और सामाजिक जिम्मेदारियों की, और सबसे महत्वपूर्ण सनातन संस्कृति और मानवीय मूल्यों की। क्योंकि राष्ट्र केवल संस्कारों से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है नागरिकों से भी, और नागरिक बनते हैं चरित्र, संस्कार और चेतना से। राष्ट्रीय चेतना एक ऐसा मंच है जहां आने वाले समय में हम विद्वानों, शिक्षकों, समाज सेवियों, युवाओं और विशेष अतिथियों के साथ इन विषयों पर चर्चा भी करेंगे। शुरुआत करते हैं उस विचार से जो हर भारतीय के भीतर सोई हुई जिम्मेदारी को जगाना चाहती है, राष्ट्र चेतना। आज के प्रथम अध्याय के साथ भारत और भारतीय संस्कृति।

ये एंटिटी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है, लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को

उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं डीए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है, और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनेमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनेमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीसी दिया जाता है,
एल्बेंडाजॉल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजॉल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनिमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जैसे स्केबीज है जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो जुए होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन। अर्चना जी, ओवर टू यू।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं, और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने।
2: कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछू?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए, तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
4: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आइए दोस्तों, अब समय हो चला है आज की एक खास प्रस्तुति का। स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर यह खास प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
2: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
3: जी,
2: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं, जानते हैं बच्चे की जान बचेगी फिर भी हिचकिचाते क्यों?
3: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
2: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
3: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
2: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
3: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
2: हाँ,
3: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने दो भैया।
2: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
3: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
3: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
2: बिल्कुल।
3: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
2: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं। इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
3: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित

0: करण नहीं करवाए तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी, गप्पे मारोगी, इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं। और जब ये सम्मिलित डिसीशन की बात आती है ना, तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली, टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
0: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
0: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब हैं, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूं आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। और फिलहाल 9:11 हो गए हैं और 22 अगस्त आज की तारीख है और दोस्तों शनिवार का दिन है। बाहर बराबर झमाझम बारिश हो रही है। देखिए सुबह जब मैं उठी तब थोड़ी टिप टिप टिप टिप बारिश थी, फिर उसके बाद बड़ी तेज़ बारिश हो गई और उसके बाद फिर कम हुई और अब फिर से किनमिन चालू है। आपके यहाँ पर क्या स्टेटस है बारिश का, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। नंबर बड़ा ही आसान सा है 9639012111। बट यही कहूँगी कि जैसे सुबह से हम देख रहे हैं बारिश का हाल, वैसे ये पूरे दिन के लिए भी रह सकता है। तो इसीलिए अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो भी बारिश से बचने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स हैं वो सब ले करके चलें। रेनकोट आप साथ में रख सकते हैं, छातों तो ज़रूर रखें और साथ ही साथ शूज़ को अवॉइड करें। यार जो लेदर वाले शूज़ होते हैं उन्हें अवॉइड करें। आप कुछ और क्रॉक्स एंड ऑल डाल सकते हैं या कुछ ऐसे टेम्प्रेरी शूज़ हों आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। और ऐसे शूज़ पहनने हैं जो स्लिपी ना हो, यानी कि जो नीचे से घिसे हुए ना हो, जो आसानी से फिसलने में कभी आपकी हेल्प कर दें। तो इसलिए ऐसे शूज़ का आपको चयन नहीं करना है। कुछ ऐसा लें जिसकी ग्रिप ठीक हो। और ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी महिलाओं से भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हील्स को आज प्रेफर ना करें और कुछ ऐसा पहने जिसमें ग्रिप अच्छी रहे, वो फिसलने में आपकी हेल्प ना करे। ओके, और इसी के साथ बहुत सारी महिलाएं जो हैं बहुत तामझाम पहन लेती हैं, जैसे कि बहुत लटकने वाली चीज़ें, तो आप उनको भी आज अवॉइड करें। क्योंकि ऐसे मौसम में ना एक तो खुद को संभालना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसा आउटफिट कैरी कर लेते हैं जिसको बार बार संभालना पड़ता है तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और ऐसे में अगर आप कहीं ऐसे फंस गए हैं चलने के मामले में तो आप चलने पे इतना फोकस्ड ना होकर के अपने आउटफिट में ही उलझे रह जाते हैं, तो इतना उलझना नहीं है। सुलझा हुआ कपड़ा आज आप पहने ताकि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन्स ना हो और आपका कहीं भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसी के साथ दोस्तों अगर ज़रूरी ना लगे बाहर निकलना, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं, आपका घर पर रहकर भी काम चल सकता है, तो आप घर पर ही रहें, बच्चों को भी घर में ही रखें, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। बारिश में अगर बच्चे बाहर गए हुए हैं स्कूल एंड ऑल, तो उनको पिक करके लेकर के आए सावधानी से घर पर और उनको एक बात के बाद बस घर में ही रहने दें। और कुछ गर्म गर्म सूप उनको बना करके दे सकती हैं, ऐसे मौसम में सूप बड़ा अच्छा लगता भी है और सेहत के मायनों में होता भी है। बाकी चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करेंगे आपके साथ, बाकी की बातें करूंगी थोड़ी सी देर में।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके पास। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, 9:24, 22 अगस्त आज की तारीख, और बारिश वाला ये दिन है ना, बारिश वाला दिन हो चुका है। तो चलिए, आज कुछ आपके लिए ऐसे गाने भी लेकर आऊँगी जो बरसात वाले गाने होते हैं, बरसाती गाने। लेकिन उससे पहले लेकर आई हूँ आपके लिए फॉर्मूला ऑफ द डे, जो कुछ यूँ कहता है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को देख करके रुकिएगा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सीढ़ी बना लीजिएगा। और इस विचार से हम ये सीखते हैं कि हर किसी के जीवन में परेशानियां और चुनौतियां आती जाती रहती हैं। जो लोग इनसे घबरा जाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति जो होते हैं इनसे पार पाने का रास्ता आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं। और जब आप रुकावटों को एक दीवार की तरह देखने के बजाय एक सीढ़ी यानी कि आगे बढ़ने के साधन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए, जो आपके रास्ते में जो चैलेंजेस आ रही हैं, जो चुनौती आ रही है, आपको मजबूत और काबिल बनाने वाले लगने लगेंगी। साथ ही साथ हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा करके जाती है, जिससे हमारा मानसिक और आत्मिक विकास होता रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की एक पॉजनेस नहीं आती है, कंसिस्टेंसी नहीं आती। इसी के साथ दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत सामने आती है तो ये मत सोचिए कि ये आपको बेहतर बनाने के लिए आई है, यही सोचना है आपका। ये नहीं सोचना है कि ये फिर से मेरे मतलब रास्ते में आ गई है, या आप उसको बस पॉजिटिव लें। कहने का मतलब ये है, रोने या शिकायत करने के बजाय आप अपना जो ध्यान है वो हमेशा अपने गोल पर रखें, और आप सॉल्यूशंस के बारे में भी सोच सकते हैं प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए। हर परिस्थिति में कुछ सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। हर कंडीशन में आप सकारात्मक रहें, समस्या को ना देखें, समाधान ढूंढने पर फोकस्ड रहें और चुनौतियों से बिल्कुल भी ना डरें। फिलहाल चलिए, गाना बहुत ही प्यारा सा आपके लिए लेकर आई हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ बरसाती गाने, हम साथ में एंजॉय करने वाले हैं। और दोस्तों, घर पर हैं, अगर वीकेंड मना रहे हैं तो चाय पकौड़े तो बिल्कुल आपने बना ही लिए होंगे, है ना। अगर बना लिए हैं तो लेट मी नो ऑन माई नंबर 9639012111। मीनवाइल एंजॉय करेंगे ये गाना फ्रॉम द मूवी बूम।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास। 9:48 हो गई हैं और फिलहाल चलिए आपको बता देती हूँ कि आज का जो इतिहास है यानी कि 22 अगस्त का जो इतिहास है वो क्या कहता है। तो असल में ये बात है 1639 की, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की वर्तमान राजधानी चेन्नई, जो कि उस टाइम मद्रास हुआ करती थी, की स्थापना इसी दिन की थी। और साथ ही साथ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के गठन की योजनाओं को लेकर आपस में मुलाकात भी की थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा रखी गई थी आज के दिन 1944 में। और वहीं आपको बताऊँ कि 2018 में भारत की स्टार निशानेबाज राही सरनोबत ने एशियाई खेलों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच डाला था। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये अपने आप एक अजब और गजब और बेमिसाल बात हो जाती है ना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आज ना दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1924 यानी के 1924 में। उन्हें हिंदी व्यंग को एक नई दिशा और पहचान देने के लिए भी जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता चिरंजीवी का जन्मदिन आज के दिन होता है यानी कि 22 अगस्त 1955 को उनका जन्म हुआ था। भारत के सुप्रसिद्ध कलाम मर्मज्ञ इतिहासकार और दार्शनिक का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था यानी कि 1877 में 22 अगस्त को ही आनंद कुमार स्वामी का भी जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था आज 1919 में प्रसिद्ध हिंदी कवि और नाटककार जिनका लिखा गीत हम होंगे कामयाब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यानी कि गिरिजा कुमार माथुर, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। बाकी आपके लिए आज का दिन कैसे खास हो जाता है लेट मी नो ऑन माई नंबर 9639012111। मीनवाइल हम इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना। और फिलहाल आपको बता दूं कि आपको कोई गाना किसी को डेडिकेट करना हो, कोई आपको गाने की फरमाइश करनी हो, तो आप भी मुझे ज़रूर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी, जो कि यही है। इसी के साथ चलिए दोस्तों आप यूँ ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और ये गाना आप सभी के नाम

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 97-

0: 7 5 9 3 0 3 0 2 2.
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: सभी मेंबर्स को इन सभी बातों का पता होना चाहिए, तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें। देखिए, हमारे घर में, हम सभी के घर में कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होता है, मतलब कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है जिसकी सेहत का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है और हमें रखना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। देखिए, किसी किसी की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो अपना ध्यान रख सके, लेकिन कोई कोई ऐसी कंडीशन में भी नहीं होता कि वो अपना ध्यान बिल्कुल भी ना रखे, केयरलेस बन जाए बिल्कुल, ऐसा नहीं है ना। अगर आप किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति के पीछे पड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, उनको भी आपका कोऑपरेशन चाहिए और आपको भी उनका कोऑपरेशन चाहिए, तभी कुछ चीज़ें आगे जाके ठीक रहती हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे परिवार की नींव और मार्गदर्शन भी उन्हीं के अंडर चल रहा होता है हमारे पूरे परिवार का। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, उनके साथ साथ उनकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो कम होने लगती है और बीमारियां जो हैं उनको आसानी से टारगेट करने लग जाती हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से उनका खास ख्याल रख सकते हैं, चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ी सी बात आपसे साझा कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है, जब बढ़ती उम्र हो रही होती है तो पाचन शक्ति कमज़ोर होना लाजमी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हमें ना अपने घर के बड़े लोगों का जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा सादा और मसाले रहित, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो, वैसा रखना चाहिए। यानी कि पाचन के अनुकूल उनका भोजन होना चाहिए, उन्हें इस तरीके का भोजन दिया जाना चाहिए जो आसानी से पच सके, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, उबली हुई सब्जियां या सूप या जो भी नॉर्मली आप घर में बनाते हैं, बस बशर्ते उसमें मसाले बहुत ज़्यादा ना हों। और बुज़ुर्ग अक्सर प्यासा जो है कम महसूस करते हैं प्यास, जिससे उनको हाइड्रेशन हो सकती है, तो उन्हें दिन भर में पर्याप्त पानी देना या नारियल पानी देना या नींबू पानी के साथ साथ आप छाछ भी एक ऑप्शन रख सकते हैं, उन्हें देते रहिए, समय समय पर उनसे पूछते रहिए, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है जहाँ पर प्यास भी थोड़ी कम हो जाती है। वहीं बहुत सारे लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है या डायबिटिक अब होने लगे हैं लोग, तो उससे बचाव के लिए उनके खाने में नमक, चीनी और तेल मसालों का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करने की कोशिश करें, तभी आप कुछ उनके लिए हेल्दी सा कर पाएंगे, है ना। चलिए, फिलहाल हम पहले ये इंजॉय करेंगे गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अगेन, सॉन्ग ऑफ बरसात।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट अवेल। दोस्तों, मैं ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। 10:26 हो गई है, 22 अगस्त आज की तारीख है, और राम जाने मूवी का भी हमने टाइटल ट्रैक इंजॉय किया। फिलहाल ना हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप किस तरीके से, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो बात है वो है खाने पीने से रिलेटेड ही। उनको कुछ ऐसा भोजन दें जो कि आसानी से पच जाए, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, उबली हुई सब्जियां या सूप वगैरह। साथ ही साथ पानी का भी ध्यान रखें कि कितना पानी वो पी रहे हैं, और अक्सर ऐसी कंडीशन में, ऐसी एज में ना, प्यास भी बहुत कम लगने लगती है, महसूस कम होने लगती है, जिससे कि हाइड्रेशन हो सकता है। तो उन्हें आप दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करते रहें ताकि वो हाइड्रेटेड रहें। वहीं बीपी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रहता ही है, अब डायबिटिक भी रहने लगे हैं लोग, तो उससे बचाव के लिए आप खाने में नमक की मात्रा जो है वो कम रखें, चीनी और तेल मसालों का इस्तेमाल भी कम रखें, और हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए दूध, पनीर, मखाने और ताज़े फल नियमित रूप से उनको दें ताकि वो थोड़े से ठीक रहें। क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सारी चीज़ें ना, यू नो, डेट्रियोट होने की तरफ रहती हैं और सब चीज़ों की कमी आनी शुरू हो जाती है शरीर में, तो ये सिर्फ खाने पीने से ही ठीक की जा सकती है। वहीं आप उनका नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें, और उनकी दवाइयां अगर चल रही हैं किसी भी प्रकार की, तो उनकी जो मेडिकेशन है उसका भी ध्यान आप ज़रूर रखें, क्योंकि बुज़ुर्गों की सेहत में लापरवाही बड़ी हमें महंगी पड़ सकती है ना। उनकी दवाइयों का आप एक चार्ट बना सकती हैं और समय पर लेना ये सुनिश्चित आप करें। कई बार वे भूल जाते हैं या गलत खुराक भी ले लेते हैं, तो इसीलिए दवाइयां आप खुद संभालें, खुद उनको दवाई देंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। महीने में या आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाते रहिए। साथ ही साथ किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्या, जैसे कि अगर आपको लगता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, या उनके पैरों में सूजन आपको दिखाई दे रही है, या लगातार कमज़ोरी बनी हुई है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ऐसी कंडीशन में तुरंत आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार। फिलहाल चलिए ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, गई मचाइएगा।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
5: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें तो आपसे कर भी रही हूँ। 10:50 हो गई हैं एज पर माय स्टूडियो क्लॉक। 22 अगस्त आज की तारीख है। और फिलहाल ना मैं आपसे बातें कर रही थी कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े लोग हैं, आप किस तरीके से उनकी देख रेख रख सकते हैं। और ऐसे में मैंने आपको बताया था कि आप उनकी जो दवाइयाँ हैं उनकी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो थोड़े पैनिक हो जाते हैं और कुछ गलत दवाइयां भी वो ले सकते हैं। ऐसे में आप उस चीज़ के कमांड अपने हाथ में लें और दूसरा उनको बताकर भी चलें, ताकि अगर आप कभी एब्सेंस रहती है आपकी तो वो अपने आप से भी दवाइयों को और सही दवाइयों को ले सके। अलग अलग आप उनके रैपर बना सकते हैं, अलग अलग थैले बना सकते हैं कि ये दोपहर सुबह शाम इस तरीके से आप बना सकते हैं, और कौन सी दवाई किस चीज़ की है ये भी आप लिख करके एक स्लिप पर उस पर चिपका सकते हैं। इसी के साथ रेगुलर डॉक्टर की विज़िट ज़रूर कराएं और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर मेडिकल चेकअप भी उनके कराते रहें, या फिर एज़ पर योर डॉक्टर्स एडवाइस उसके रहते भी आप चेकअप करा सकते हैं। इसी के साथ फिज़िकल एक्टिविटी देखिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं शरीर को सक्रिय रखने के लिए। जी, आप उनको सुबह या शाम को घर के आसपास या पार्क में हल्की सी सैर कराकर लेकर आ सकते हैं।

खुद से या फिर उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से बुजुर्गों के अनुकूल हल्के योगासन भी होते हैं, और आप चाहें तो स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं हल्की वाली, जिससे जोड़ों का जो दर्द है वो कम हो सके, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। साथ ही साथ घर में चलते समय उन्हें फिसलने से बचाने के लिए बाथरूम और सीढ़ियों पर एंटी स्लिप मैट्स आप डालें, और सपोर्टिंग रोलिंग रेलिंग की व्यवस्था भी आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी हो जाती है। और उनको जो आप स्लीपर्स देते हैं, ये भी ध्यान रखें कि उनकी ग्रिप अच्छी हो, वो फिसलन वाली ना हो रखी हो, क्योंकि अगर उस उम्र में कोई भी व्यक्ति गिरता है तो सच में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और फिर उसका जो दर्द है वो बस जाता ही नहीं है। इसी के साथ चलिए बहुत सारी बातें आपसे साझा करूंगी, बट बिफोर दैट हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ गाने, तो इन गानों को इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
3: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal

0: recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: यू आर लिसनिंग टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ, आपके आज जीवनशी प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। 11:12 हो गए हैं, 22 अगस्त आज की तारीख है। और मैं ना आपको बता रही हूँ कि आप घर के बड़े लोगों का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि उन्हें हल्की सैर के लिए आप इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, हल्का योग और स्ट्रेचिंग उनके साथ बैठ करके कर सकते हैं, और उनकी सुरक्षा का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घर में ना अब मिट्टी वाले घर तो रहे नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं जो बिल्कुल चिकनी जिसकी सतह रहती है, तो ऐसे में फिसलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बनी रहती है। तो आप अपने घर में जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर फिसलना बहुत ही लाजमी हो जाता है, तो वहाँ पर आप एंटी स्लिप मैट्स ज़रूर रखें और सपोर्टिंग रेलिंग भी आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं या इवन छोटे लोग भी होते हैं, ये तो सभी के लिए कॉमन हो जाती है बात, कि उनको ना अकेला आप ना छोड़ें। देखिए, वृद्धावस्था जो होती है उसमें अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है। उनके साथ आप समय बिताएं, उनकी पुरानी बातें सुनें और परिवार के फैसलों में उनकी राय ज़रूर लें। उनको कभी भी ऐसा फील ना कराएं कि अब उनकी उम्र हो गई है और उनको आप साइड लाइन करके बस अपने डिस्कशंस में बिजी हैं, ऐसा फील कराना बहुत ही गलत हो जाता है। इसी के साथ घर में तनाव मुक्त और खुशनुमा माहौल बना करके रखें। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, भजन सुनने या अपने हम उम्र जो उनके दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए आप प्रोत्साहित करते रहें। कभी भी उसमें रोक टोक ना करें और सुनिश्चित करें कि वो रात को चैन से 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि अनिद्रा की समस्या होने पर डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। और ये जो बुढ़ापा होता है, इस एज में ना बहुत कम नींद भी आने लगती है, या हम कह सकते हैं कि बड़े लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि आगे कैसे करेंगे बच्चे, या अब आगे कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसे में इतने सारे स्ट्रेस में, इतनी सारी टेंशन में उनकी जो नींद है वो खुद ब खुद ही उड़ जाती है। तो ये आपको मेक श्योर करना होगा कि उनकी जो नींद है वो ठीक से ले पा रहे हैं। और जिन घरों में बुज़ुर्गों की सेवा और सम्मान होता है ना, उस घर में सकारात्मक और सुख समृद्धि का वास होता है। ये बात आप जितने जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना आपके घर और परिवार के लिए अच्छा रहता है। बाकी अभी ना हम ये गाना एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM विद मी आरजे वंशी।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
2: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
1: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
2: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। 11:44 हो गई हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। दोस्तों अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आप किस तरीके से केयर कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो विजन भी कमज़ोर होने लगता है, यानी कि आँखों की जो दृष्टि होती है वो भी कमज़ोर होने लगती है और संतुलन बिगड़ने का जो खतरा है वो बढ़ता चला जाता है। तो घर के हर कोने में, विशेष करके सीढ़ियों के पास, कॉरिडोर में और बाथरूम में अच्छी और तेज़ रोशनी का आप प्रबंध करें ताकि रात में उठने पर उन्हें किसी भी प्रकार की ठोकर ना लगे। वहीं बाथरूम का फर्श हमेशा हमेशा सूखा और साफ रखें। फिसलने से बचाने के लिए फ्लोर पर एंटी स्लिप मैट, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसके अलावा आप रबर स्ट्रिप भी लगवा सकते हैं और कमोड के पास सपोर्टिंग ग्रैब बार ज़रूर आप लगवाएं ताकि उठने बैठने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि उनका चश्मा, उनकी दवाइयाँ, पानी की बोतल या उनकी छड़ी अगर वो इस्तेमाल करते हैं, उनके बिस्तर या बैठने की जो जगह है उसके पास रखें ताकि उन्हें बार बार उठना ना पड़े और परेशान ना होना पड़े। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ये अगर आप ये कर लेते हैं इनसे आपकी जो ज़िंदगी है थोड़ी सी आसान हो जाती है, आपके घर के बड़े लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी सहज हो जाती है ना। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि बुज़ुर्गों की जो त्वचा है या बाकी के जो शरीर के अंग होते हैं वो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं एक टाइम पर, तो उम्र के साथ जो त्वचा ड्राई हो जाती है या पतली हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, नहाने के बाद हल्के मॉइस्चराइज़र या नारियल तेल का इस्तेमाल करने के लिए आप बोल सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की खुजली या उनको ड्राइनेस या रूखापन ना हो। साथ ही साथ उनके पैरों और तलवों की नियमित मालिश आप कर सकते हैं। उनके लिए आरामदायक और मुलायम जूते या चप्पल आप ले सकते हैं ताकि चलने में उनको आसानी हो और किसी भी प्रकार की समस्या उनको ना फेस करनी पड़े। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलेज डिकेस्ट्रो। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं। तो अगला जो गाना है वो बिल्कुल आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से ही सैयद मशरूर, साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के साथ साथ हमें प्यार भी भेज रहे हैं। बाकी चलिए आप सभी के नाम ये हमारे कुछ गाने आपके लिए। इंजॉय करते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल।

अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Station First, Always First। और दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार प्रोग्राम मेरे यानी आरजी वंशी के साथ। और कुछ आज ऐसी आपसे बात कर रही हूँ जो हम अक्सर बात करने में हिचक जाते हैं और हमारे बच्चे भी शायद शाइनेस के चलते या शर्म के चलते ओपनली हमसे भी उस बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एडोलसेंट हाइजीन के बारे में, जो कि आपको ये बताएगी कि आपको किशोरावस्था में किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है और अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना है। देखिए, ये जो एज होती है वो 10 से 19 वर्ष तक होती है लगभग, और ऐसे में शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं, हॉर्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो इस समय पर सही मार्गदर्शन अगर बच्चे को ना मिले, खासतौर पर अगर लड़कियों की बात करें, तो वो जीवन भर बीमारियों की शिकार हो सकती है। इसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ कि संक्रमण का जो चक्र होता है, जब एक किशोरी एक पैड को बड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करती है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट से आपके गर्भाशय तक पहुँच जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे होता है पीवीडी यानी के पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसके चलते ये निचले पेट में लगातार दर्द का कारण बना देता है और काफी सारी किशोरियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है और उन्हें लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप स्वच्छता पर जरूर ध्यान दें और अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं। इसी के साथ जो RTI और UTI जैसी समस्याएं बच्चियों में देखने को मिली है, आप कह सकते हैं इसमें प्राइवेट पार्ट से कुछ अजीब सा डिस्क्रीट होना, खुजली महसूस होना या आपके यूरिन में आपको जलन महसूस हो सकती है, तो ये चीजें शामिल होती हैं, ये सिम्टम्स होते हैं जो बाद में जाके प्रजनन मार्ग में संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। वहीं आपको बता दूं कि भविष्य का जोखिम भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कंटिन्यूएशन बेसिस पर संक्रमण होता रहता है और संक्रमण से जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे आगे चलकर जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम लड़कियों में बन जाती है। तो आपको जरूरी है कि आप अपनी बच्चियों को ऐसी अवस्था में स्वच्छता की वैल्यू को जरूर समझाएं और उन्हें बताएं कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है। इसी के साथ ना बहुत सारे भ्रम हैं जो महामारी से जुड़े हुए हैं, आपको ये भी बताऊंगी, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल हम बातें कर रहे हैं जो आपकी एडोलसेंट एज होती है उसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कियों को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं और इसके चलते उन्हें काफी सारी दिक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ जानकारियों के अभाव आपको लेकर, जिससे कि आप पीवीडी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके साथ आरटीआई या फिर यूटीआई की समस्या बन सकती है, या आपको भविष्य में भी फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को हाइजीन का प्रॉपर मतलब बताएं और कहें उनसे कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं तो ठीक तरीके से पहले वॉशरूम को साफ करके ही उपयोग करें, और बाद में भी उपयोग करने के बाद भी उसको फ्लश जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी ऐसे मिथक हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं महामारी से रिलेटेड, चलिए आज उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी पीरियड्स का खून होता है वो जहरीला होता है या बहुत ज्यादा गंदा होता है, अपवित्र होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि ये वही सामान्य खून होता है जो आपकी बॉडी के अंदर नसों में बहता है। ये गर्भाशय की अंदरूनी दीवार, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके टूटने से निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अपवित्र होता है, गंदा होता है। तो ये एक मिथक बना हुआ है हमारी सोसाइटी में और ये अंधविश्वास है जिसको हमें सही में पार करके जाना होगा। वहीं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आप अचार छुएंगे तो वो खराब हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये इसलिए होता है। अचार में आपने देखा होगा आमतौर पर फंगस आ जाती है। वो आती कैसे है? हाथों की नमी से वो खराब होता है। महामारी से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप गीले हाथों से इंसान भी उसको छू लेगा तो जो अचार है वो पूरी तरीके से खराब होने की स्थिति में आ जाता है। उसको खराब करती है नमी, ना कि महामारी से इसका कोई संबंध है। वहीं बहुत लोगों का मानना है कि पीरियड्स में आपको नहाना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसे में जरूरी है कि साफ सफाई आप बिल्कुल मेंटेन करके रखें। तो अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको, तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो शरीर में कुछ ऐठन आपको जो महसूस होती है या दर्द जो हो रखा होता है, वो उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सा आराम मिलता है और आपको बहुत फ्रेश भी फील होता है, बहुत साफ साफ फील होता है। जब आप ऐसा फील करते हैं तो आधी जो परेशानी है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। आपका क्या कहना है इन बातों पर, आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या ऐसी बातों को आपके साथ साझा करना चाहिए, ताकि जो ये जानकारी है जिसके अभाव में हमारी किशोरियों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में ओपनली बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में उन मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस विषय पर, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं ये कहूंगी कि आप अपने घर में जरूर ऐसा पर्यावरण मेंटेन करके रखें कि बच्चा आपसे अपनी हर परेशानी के बारे में बात करने में हिचके ना। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधा।

0: सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ, और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँच हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा उछला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली करनी होगी, जाना होगा स्टूडियो के बाहर, ताकि अगला प्रेजेंटर आए, अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और आपसे ढेर सारी बातें करे, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी चलते चलते कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना पीना जो है अपना सेहतमंद रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ पर कुछ गलत प्रभाव पड़े या आपके बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाए, क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिसका बाद में जो परिणाम होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप हुआ पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं, या प्योरीफायर का भी आप पानी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप हार्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगी आपसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी आपके इस अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकती है और दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। सतर्क होकर चलें और सुरक्षित होकर चलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही मदमस्त रहिए। फिलहाल जाते जाते छोड़कर जाऊंगी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं आपसे मिलूंगी कल इसी समय और इसी प्लेस पर और बहुत सारी बातों के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स।

0: 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किट होर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किट होर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूं, इस देखभाल करता हूं, मैं हूं वास्तु कृष्णा। तो कैसे हैं आप? ये है आपका अपना कार्यक्रम जय जवान जय किसान। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बढ़िया से देसी गाने रागनी के साथ में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज किसानों के लिए हम बात करते हैं कि कैसे गांव में रहकर ज्यादा कमाई कर सकते हैं, क्या नई स्कीम आई है सरकार की, सरकार कैसे मदद करती है, सरकार के कौन से विभाग डिपार्टमेंट है या ऑनलाइन क्या होता है, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है बताइएगा जरूर। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है, क्यों? खादी ग्रामोद्योग क्या है और कैसे काम करता है, कैसे किसानों की मदद होगी, सब बताऊंगा आज इस कार्यक्रम में।

0: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुभारती आजादी हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है जय जवान जय किसान। दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ये MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। एक संवैधानिक संस्था है ये, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। मैं जब जब आपको किसी पालन के बारे में बताता हूं, मुर्गी पालन, मछली पालन, गाय पालन, मतलब समझ रहे हैं ना, सीप की खेती के बारे में हमने बात की या हमने इस तरह की जितनी भी कुछ लीक से हटकर ट्रेनिंग की बात होती है, तो हम हमेशा खादी ग्रामोद्योग की या MSME की, इन सभी चीजों की बात करते हैं। तो आज पहले हम सरकारी इस डिपार्टमेंट की ही बात कर रहे हैं कि ये है क्या और कैसे किसानों की मदद हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाना, कुटीर उद्योग, छोटे मोटे जो काम धंधे होते हैं उनको बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। आप समझे, भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट ही केवल इसीलिए बनाया है कि किसान की मदद हो सके, लेकिन ज्यादातर किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट दे सकूं इस बारे में। तो आप समझे, खादी ग्रामोद्योग यानी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और ये अंडर में किसके आता है, MSME मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो कुल मिलाकर आसान भाषा में समझते हैं, गांव का आदमी गांव में रहकर कैसे ज्यादा कमाए, सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है और उसी को कहते हैं खादी ग्रामोद्योग। आगे कुछ और बात करेंगे। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम सुनने वाले सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं जय जवान जय किसान कार्यक्रम में। खादी ग्रामोद्योग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे गांव के लोगों की, हमारे किसान भाइयों की मदद करता है, इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। केवीआईसी किसानों की मदद कैसे करता है, किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर न रखकर अतिरिक्त कमाई, एक्स्ट्रा अर्निंग कमाई से जोड़ने के लिए भी केवीआईसी कई योजनाएं चलाता है। जैसे कि हनी मिशन, मधुमक्खी पालन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि 80% से 85% तक की सब्सिडी ही मिल जाती है आपको। आप समझ रहे हैं, मधुमक्खी पालन आपकी वो फ्री की कमाई हो सकती है जिसमें टूल किट भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, आपको तरीके भी बताए जाते हैं, आपको बॉक्स भी मिल जाते हैं। बस आपकी कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो फिर ठीक है।

इसके बाद होता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या आता है, यदि कोई किसान या कोई ग्रामीण युवा अपनी खुद का एग्रो प्रोसेसिंग या ग्रामीण उद्योग जैसे सरसों तेल का मिल, दाल का मिल, डेयरी, मसाले का बिजनेस, कोई चक्की वगैरह शुरू करना चाहे तो इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें सरकार की तरफ से 15% से 35% तक की मार्जिन मनी, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं, वो मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप महिला हैं तो और भी ज्यादा मिल जाएगा, एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, हर किसी के लिए थोड़े अलग नियम होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो इतनी सपोर्ट तो बहुत तगड़ी बात होती है।

नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। खादी ग्रामोद्योग क्या है और ये कैसे काम करता है? खादी ग्रामोद्योग मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में काम करता है दोस्तों। पहला है खादी, हाथ से काते गए सूत और हाथ से बुने गए कपड़ों, सूती, रेशमी और ऊनी उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देता है। ये तो आपको पता ही है, गांधी आश्रम पर हमारे मेरठ में खूब फेमस है। दूसरा होता है ग्रामोद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज, गांव में शुरू किए जा सकने वाले छोटे मोटे काम, जैसे मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पोटरी, हर्बल उत्पाद, आटा चक्की, मसाला चक्की, सिलाई, ये सारे काम इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तकनीकी और वित्तीय मदद कैसे मिलेगी, ये सब कुछ यही आपको जानकारी मिलती है, तभी तो ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। ये कैसे काम करता है? KVIC स्वयं सीधे सामान नहीं बेचता, कुछ राज्य स्तरीय भवनों को अगर छोड़ दिया जाए तो, बल्कि निजी उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और कारीगरों को सब्सिडी मिलती है, सस्ती दरों पर लोन मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, मार्केटिंग के तरीके सिखाए जाते हैं और उसके बाद आपको आजाद कर दिया जाता है कि अब आप कमाइए, आप बिजनेसमैन बन जाइए, अपने कदमों पर खड़ा हो जाइए। KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग कैसे मदद करता है आपकी, ये हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नंबर है 9639012111।

अब बसंत भी अपने बड़े भाई रूप के साथ धारा नगरी छोड़ के चल देता है। चलते चलते दोनों भाई एक बहुत गहरे वन में पहुंच जाते हैं और शाम हो जाती है। दोनों भाई चलते चलते बहुत थक गए थे। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। रात को एक सर्प आके बसंत को डस लेता है। सुबह जब रूप की आंख खुली तो वह बसंत को उठाता है, लेकिन बसंत का शरीर तो सर्प के जहर से लीला हो चुका था। अब रूप अपने भाई बसंत को मरिया हुआ समझ कर रोन लग गया और के कहने लग गया, भला

0: कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो में शेयर करें।
1: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। बात कर रहे हैं केवीआईसी कैसे मदद करता है हम ग्रामीण वासियों की या हम किसान भाइयों की। खादी ग्रामोद्योग, जी हाँ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो कि आता है एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर, तो कैसे आप मदद ले सकते हैं इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका हनी मिशन है, आपको कोई काम करना है आपको उसकी ट्रेनिंग मिल जाती है, आपको कोई नया पालन वगैरह करना है आपको उसकी ट्रेनिंग मिलती है, फिर उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर मदद भी कर देते हैं कि आपको लोन मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए काम शुरू करने के लिए, आपको शुरुआत में इतनी भी ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप अपना माल कैसे बेचेंगे, मार्केटिंग के तरीके भी सिखाते हैं। तो प्रोजेक्ट रिहैब है इनका एक, जिन ग्रामीण या पहाड़ी इलाकों में हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं वहां केवीआईसी खेतों के किनारे मधुमक्खी के से की बाढ़ फेंसिंग लगा देते हैं जिससे हाथी डरकर दूर रहते हैं और फसलें बच जाती हैं। दूसरा होता है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, मिट्टी के बर्तन या दिए बनाने वाले किसान कारीगरों को बिजली से चलने वाले चाक मिल जाते हैं और पग मिल बाटी मिल जाती, मतलब बहुत कुछ मदद मिल जाती है आजकल। इसके लिए माटी कला बोर्ड भी बना हुआ है, वो भी मदद करते हैं। अब देखो, मैंने इतनी सारी योजनाओं के बारे में आज तक आपको बताया है, मुझे खुद भी जब मैं पढ़ता हूं ना इन बारों में कि हाँ यार ये तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप ग्रामीण है ना, आप भारत के किसी भी गांव में रहते हैं, सरकार इतनी ज्यादा योजनाएं आप लोगों के लिए चलाती है, आपको बस कुछ कर गुजरने की तमन्ना तो होनी चाहिए। आपको ये सोचकर नहीं बैठना कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो जमीनें भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अब हमको कहीं जाकर गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, कहीं शहरों में जाकर किसी फैक्ट्री में किसी मिल में नौकरी करनी पड़ेगी। जी नहीं, आपको अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए सरकार मदद कर रही है। आप बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए, जितनी भी जगह है जो भी कर सकते हैं, अगर आप युवा हैं तब तो और भी ज्यादा आपके पास चांस है आगे बढ़ने के लिए।

दोस्तों आज के कार्यक्रम में हमने बात की है खादी ग्रामोद्योग के बारे में, कैसे हम लोगों की मदद ये डिपार्टमेंट करता है। आप अगर इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं, कभी आपने इन सब चीजों में कुछ किया है, ट्रेनिंग ली है, कोई काम किया है, नहीं किया है, आप मेरे साथ में साझा कर सकते हैं अपने मन की बात कि खादी ग्रामोद्योग जो होता है, आप यहां से जाकर अपने काम कैसे कराते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, क्या कभी आपने कोई ट्रेनिंग ली है, आपने अपने रोजगार को बढ़ाने की कोशिश की है। तो छोटे मोटे जो धंधे होते हैं, काम होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, ये डिपार्टमेंट ही इसलिए है, ये मंत्रालय ही इसलिए है कि गांव का व्यक्ति आगे बढ़ चाहे किसी ना किसी तरीके से। अगले कार्यक्रम में इसी विषय में हम कुछ और बातें जरूर करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: ओ मेरी सासू की, भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो?
2: ए सठानी, नीर बन चलेगी?
1: आज ना जाऊंगा, ना गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजान में बिजली पड़े है, तू किनारिये जागी।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। To no more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ।

0: हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

रम जाओ। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझ कर कि ऐसा तो होता ही है ये समझ कर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जाँच कराएं, क्योंकि जाँच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं। अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाई करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजीशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

0: जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ कही। और जैसा कि पिछली कड़ी में भी आपने सुना, हम बात कर रहे थे एनीमिया के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में। और इस कार्यक्रम को और ज्यादा रोचक और जानकारी से भरपूर बनाने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जाँच, IFA MMS, पोषण और मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार और उनके विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद मां का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य बात है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, जैसे मैंने बताया, सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी दोनों हमारे साथ हैं। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना सामान्य सी बात है, क्या ये ठीक बात है?
1: देखो जी, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की बहुत जरूरत हो है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य बात हो सके है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आवे, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस करे, तो इसे नजरअंदाज कतई ना करना चाहिए जी।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सके जी, और यही कारण है कि प्रसव के बाद भी माँ का स्वास्थ्य पर ध्यान देना घना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बहुत बढ़िया लगता है मुझे जब मैं यहाँ आती हूँ और आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जो महिलाओं से संबंधित हैं। और भैया, मैं जब तो एक बात समझ में आई तब मुझसे कहानी सुनो।
0: वो क्योंकि आप बहुत अच्छे से कहानी के द्वारा समझा देती हो।
2: देखो, मैं अपने गांव की शबाना की कहानी आज बताऊंगी।
0: जी जी, सुनाइए।
2: ठीक, देखो, शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया और इसके चलते घर में हो गए सब खुश।
0: अच्छा।
2: लेकिन कुछ हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि शबाना को होने लगी बहुत ज्यादा कमजोरी।
0: ठीक।
2: वो बहुत जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद में लेके उससे ज्यादा देर खड़ा ना हो जावे। और फिर घर वालों ने कहा अभी बच्चा हुआ तो थोड़ा सा टाइम लग सके। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने आके घर पे उसके हाल चाल पूछा तो आके जांच की उसे सलाह दी।
0: ठीक है।
2: और तब जाके पता चला उसमें तो खून की कमी यानी एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या, उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका साथ दिया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो गई और वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से करने लगी।
0: यानी बच्चे के जन्म के बाद या प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। टीकन जी,
2: बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो नू कहूँ बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए।
0: सेहतिया जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या कुछ असर बच्चे पर भी हो जाता है?
1: देखो जी, माँ और बच्चे पे दोनों पे इसका असर पड़ सके, प्रभाव पड़ सके, समझ रहे? अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित भी हो सके है।
0: और बच्चे के बारे में, उसके संदर्भ में?
1: देखो, साफ सी बात है, जब माँ स्वस्थ रहेगी तो अपने नवजात शिशु की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव होती है।
1: अजी, बहुत बढ़िया बात कह दीजिए आपने, सही कह दिया आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: हाँ जी, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे में या महिला में कमजोरी बने रहे तो जांच करवाना जरूरी हो जावे है।
0: यानी बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: ना, बिल्कुल ना जी, ऐसा तो ना हो तो बेहतर ही है। गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद भी देखभाल, दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देवे ही देवे जी।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ में आती है कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं।
2: बिल्कुल कर देती हैं। मैं बताऊं, ज्यादातर महिलाएं ऐसी मिलेंगी आपको जो नजरअंदाज कर देवे। असल में प्रसव के बाद अक्सर महिला का जो ध्यान है वो पूरा पूरा चला जाता है बच्चे पे। वो ये सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरत है, पहले बच्चा है, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, और अपनी तकलीफ को रख देती है वो साइड में कि बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं बताऊं, ये जो सोच है ना, कई बार परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है और यही सबसे बड़ी मुसीबत बनती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे समाज की यही बात है जो मुझे बड़ी खराब लगे, और ये बात बड़ी आम भी हो चली। मतलब अगर बच्चा रो रहा है, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी नहीं देखने की, सही है नहीं दिखने का कि उसे चक्कर आ रहे हैं, थकान आ रही है, वो इन सब के बारे में बताने की भी नहीं, हिचक जाएगी। लेकिन कई बार उसे लगता है कि लोग ये कहेंगे कि उसे ज्यादा परेशानी होती रहे।
0: लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए टीकन जी।
2: बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी जरूरी बच्चे की देखभाल है, उतनी ही जरूरी माँ की भी देखभाल हो।
0: जी सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद या बच्चे के जन्म के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बिल्कुल जी, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़े है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उभर रहा होता है इस टाइम में, ठीक है, और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी माँ की रह है पूरी पूरी।
0: यानी ये केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, इसलिए इस समय में परिवार का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है जी। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जावे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जावे, तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सके, महकम बढ़िया हो सके।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी जाने अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है या बताने में हिचकना शुरू कर देती है?
2: ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी।
0: अच्छा,
2: ऐसा बहुत ज्यादा होता है। और जैसे परिवार में कोई ये कह दे, हमारे समय में भी ऐसे ही होता रहा, थोड़ी कमजोरी तो हो गई है, इतना मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। या कभी कभी महिलाएं कह दे, तुमने अनोखा करा, हम करा ही ना। ये बातें सुनने में बड़ी नॉर्मल सामान्य लग सके, लेकिन इससे क्या होता है, इससे महिला अपनी समस्या ही बताना बंद कर दे।
0: ये बात बिल्कुल गलत है, इसको समाज में ठीक करने की जरूरत है। गर्भवती महिला या बच्चे के जन्म के बाद, प्रसव के बाद महिला की बात को सुनना उसकी देखभाल का हिस्सा है, क्यों टीकन जी?
2: बिल्कुल, इसको उसकी देखभाल का हिस्सा जरूर मानना चाहिए। मतलब अगर कोई महिला बार बार ये कह रही है कि उसे कमजोरी फील हो रही, चक्कर आ रहे, या उसे लग रहा है कि वो पहले जैसी नहीं रही, तो उसकी बातों को सबसे पहले तो गंभीरता से सुनना चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद, बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रहना भी जरूरी होता है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म होगी, लेकिन ऐसा ना है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना बड़ा जरूरी है जी।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: ना जी ना, बिल्कुल खत्म ना होती। वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना गर्भावस्था का समय।
0: क्यों टीकन देवी जी, आप क्या कहेंगे?
2: मैं भी यही कहूंगी कि प्रसव पर खत्म नहीं होती बिल्कुल भी माँ की देखभाल, बाद में भी उसकी सेहत और उसका ध्यान बड़ा जरूरी। और इसी बारे में मैं अपने जो श्रोता है और जो जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उनके परिवारों से ये कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है ना, तो केवल बच्चे की खुशियां मत मनाओ, उस माँ का भी ध्यान रखो जिसने उसे जन्म दिया है, और उसकी सेहत, उसका आराम और उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है, बल्कि क्या होनी चाहिए, ये भी बताइए।
2: देखो ये बात तुमने घनी जोर की पूछी। पहले तो परिवार की भूमिका होवे बड़ी महत्वपूर्ण। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पे चला जा और माँ की जरूरतें ऐसे में पीछे छूट जा, लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। जिसने उस बालक को जन्म दिया है उसका भी देखभाल करनी उतनी जरूरी।
0: परिवार क्या क्या कर सकता है, मतलब परिवार को क्या क्या करना चाहिए?
2: देखो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान परिवार को रखना चाहिए। और दूसरा उसे समय पर पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। तीसरा अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत पड़ रही है तो परिवार उसके साथ जाए और इसमें परिवार को साथ भी देना चाहिए। इसके आगे बताऊं अगर कोई दवा या पूरक खुराक उसे दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उस महिला की मदद करें। और सबसे जरूरी उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें, उसे बिल्कुल भी ऐसे ही न समझे कि यूं तो होता ही रहे।
0: आपने बिल्कुल जरूरी बात बताई और बहुत अच्छी बात बताई। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रमों में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी, क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी होता है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ऐसा हो है, हर महिला की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में वही सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर आपको देवे।
0: यानी अपने मन से ना दवा बंद करनी चाहिए ना ही शुरू करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी हुए है।
0: दोस्तों आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को हम पीछे छोड़ दें, क्यों टीकन जी?
2: बिल्कुल सही कह दिया आपने, अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, अगर उस महिला को चक्कर आ रहे हैं या उसे लग रहा है कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा तो उसे बिल्कुल सामान्य मानकर बाद के लिए टालो मत।
1: हाँ जी बिल्कुल सही कह दिया टीकन ने, समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ को रिकवरी करने में मदद मिले, उसकी रिकवरी बेहतर हो सके इससे। और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी।
0: दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी आज हमें यहाँ पर मिली, टीकन देवी जी और सेहतिया सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य है। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है, बच्चे का जन्म हो गया खून की कमी हो सकती है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाइए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और पूरे परिवार का सहयोग मिलना चाहिए, क्यों टीकन देवी जी?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी आप क्या कहेंगे?
1: भाई मैं तो नो कहना चाहूंगा, समय पर पहचान और उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सके हैं, यही कहना चाहूंगा।
0: जी बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही। इसी संदेश के साथ आज के इस खास कार्यक्रम की इस कड़ी को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ, सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ और ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निःशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोलें, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
5: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
7: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जय हिंद। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को। और जी बातें करने के लिए आपके बीच आपके साथ मैं यहाँ पर अपने करेक्ट टाइम पर हाजिर हो चुका हूँ और पूरी बिंदासगिरी के साथ आपसे बातें करने वाला हूँ। जैसा कि जब भी आता हूं।

ऐसे हर बार बिंदासगिरी के साथ आपसे बातें करता हूँ। फिलहाल स्टूडियो से एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैं अकेले अकेले आपसे बातें करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ बातें मुझसे करें, क्योंकि यार आप ही तो मेरे दोस्त हैं, आप ही तो मुझे यहाँ पर सुनते हैं, तो मुझे पता लगते रहने चाहिए कि आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो हल्का फुल्का रिस्पांस किया कीजिए। रिस्पांस आप कैसे कर सकते हैं? आप जा सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, जो कि हमारे रेडियो के नाम से ही होते हैं, तो वहां जाकर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, शो से रिलेटेड कोई भी सजेशन दे सकते हैं, या आपको अगर कोई अपना मनपसंद ट्रैक सुनना है तो उस ट्रैक की रिक्वेस्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। फिलहाल बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आरशे पंकज को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे

0: मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशल किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज और अभी अपने स्टूडियो में बैठा हूं, एकदम लाइव आपसे मैं बातें कर रहा हूं। और चलिए अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बड़ा करने का सोच लिया है, तो उसके लिए आपको वो मेहनत नहीं करनी चाहिए जो आप पहले कर रहे थे, क्योंकि पहले जो आप मेहनत कर रहे थे वो आप उस चीज को पाने के लिए कर रहे थे जो आपके पास अभी है। लेकिन अब आपने अपनी ख्वाहिश बढ़ा दी है, अब आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मेहनत भी आपको ज्यादा करनी होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर कुछ बड़ा करने का सोच लिया है, कुछ अलग करने का सोच लिया है, तो वैसी ही अपनी मेहनत को करना शुरू कर दें, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ा लें और ज्यादा बढ़ा लें और डटकर मेहनत करें, और तब तक करें जब तक आपने जो सोचा है वो आपको मिल ना जाए। तो जी, ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल क्या करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं यहीं पर आपके अपने रेडियो स्टेशन पर, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और अभी एक ऐसी बात आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके काफी काम की हो सकती है। आप इसे सुनने के बाद यही कहने वाले हैं कि अरे ये तो हमारी कभी कभी प्रॉब्लम बड़ी वाली हो जाती है, जिसे आपने बड़े छोटे और आसान शब्दों में हमें समझा दिया और हमें बात समझ में आ गई। अब हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो बात है, ये बात रिलेट करती है आपके मोबाइल फोन की बैटरी से। यस, सही सुना आपने, मोबाइल फोन की बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं या ट्रैवल करना होता है हमें कहीं पर, तो हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जो है डाउन होती है और हमें उसे तुरंत चार्ज करना होता है। हमें अगर किसी को अर्जेंट कॉल मिलाना हो और उस समय बैटरी डाउन हो जाए तो हम कैसे काम करें। एंड बैटरी डाउन में तो मतलब प्रॉब्लम हो ही जाती है। अगर आपको जल्दी कहीं पर जाना है और फटाफट से अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा सकते हैं। और एयरप्लेन मोड पर लगाने से आपका जो मोबाइल फोन है वो जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जितना वो रेगुलर टाइम में चार्ज होता है उस टाइम से जल्दी चार्ज हो जाएगा। आप चाहें तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके देख सकते हैं, और हाँ, काम अगर ये ट्रिक करे तो थैंक यू जरूर बोलिएगा यार, हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल हमें ऐप पर भी सुनते रहिए ऐसे ही, और हाँ, हमारी फ्रिक्वेंसी पर भी सुनते रहिए। एंड जाइए कहीं मत, क्योंकि आपका अपना बिंदास आरजे पंकज लौट कर आएगा थोड़ी ही देर में। तब तक आप इंजॉय कीजिए कुछ अपकमिंग गाने।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज एंड यहां पर अभी लाइव हूं आपके साथ, लाइव आपसे बातें कर रहा हूं और अभी बातें करने वाला हूं मैं बॉलीवुड के दबंग खान के बारे में, यानी कि सलमान खान के बारे में। देखिए भाई, आज हम इनको जानते हैं एक्टर के रूप में, है ना। एक्टिंग ये ज्यादा करते हैं, वैसे सिंगिंग भी कर लेते हैं और डायरेक्शन भी ये कर लेते हैं और अब तो प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि सलमान खान एक्टर यानी कि हीरो तो कभी बनना ही नहीं चाहते थे, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? आप यही सोचेंगे ना कि नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट सच यही है। आपको बता दूं, सलमान खान जो कि बॉलीवुड एक्टर के रूप में आज जाने जाते हैं, सफल अभिनेताओं की लिस्ट में आते हैं, ये एक्टर कभी बनना ही नहीं चाहते थे। ये बनना चाहते थे निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। लेकिन भाई, इनकी शानदार पर्सनैलिटी को देखकर लोगों ने इन्हें एज ए एक्टर देखना ही ज्यादा पसंद किया और बस इन्होंने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी और आज तक भी हम इनकी फिल्मों को देखते हैं। आप भी कोई बॉलीवुड का मजेदार फैक्ट जानते हैं तो मेरे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।
1: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है, नई राह है, नई मंजिल है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। और चलिए जी अभी आपसे कर लेते हैं एक क्विज। इस क्विज का जवाब अगर आपने सही दे दिया और सबसे पहले दे दिया तो आपको मिलेगा मौका मेरे शो में आने का, मेरे साथ बात करने का और हमारा स्टूडियो देखने का। ये मौका आपको मिलने वाला है। एंड क्विज बड़ा आसान सा होता है मेरा, लेकिन कंडीशन यही होती है जो मैंने आपको बता दी बातों बातों में कि आपको जवाब सबसे पहले देना होगा और करेक्ट देना होगा। सो फिलहाल क्विज ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है लाहौर जो गाना है गुरु रंधावा का, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं। आपको बस उस शख्स का नाम मुझे बताना है। कैसे आप मुझे बता सकते हैं, आपको जाना होगा हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर। फेसबुक यानी कि मेटा पर भी आप हमें ढूंढ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ढूंढ सकते हैं और अपना जवाब वहां पर हमें भेज सकते हैं। बाकी आपके जवाब का मैं वेट करूंगा अपकमिंग गाने के साथ। सो जल्दी से जवाब अपना भेजिए।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
2: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

ऑलराइट जी, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज, और अभी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आपसे लाइव बातें शातें कर रहा हूँ। और थोड़े टाइम पहले अभी आपसे मैंने किया था एक क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था लाहौर जो गाना है गुरु रंधावा का, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे थे, उसका नाम बस आपको मुझे बताना था, उस शख्स का नाम जिसने इस गाने को लिखा था, लिरिक्स इस गाने के लिखे थे। तो कई सारे जवाब मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन अब सही जवाब मुझे चुनना है, और वो जवाब चुनना है कि जो सबसे पहले आया है। तो मुझे जो जवाब सबसे पहले मिला हुआ है, ये जवाब मिला हुआ है अनुव का। इन्होंने मुझे बताया है कि गुरु रंधावा का जो गाना है लाहौर, इस गाने के लिरिक्स गुरु रंधावा ने ही लिखे हैं। वही वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है, और चेक करने के बाद आपका जवाब भी हमें पता चलता है कि आपने जवाब भी हमें सबसे पहले भेजा है। सो लाहौर गाने के लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और इन्होंने ही इस गाने को गाया भी है, ये तो सभी जानते हैं। एंड अनुव, आपको मिल रहा है मौका मेरे शो में आने का और हमारा स्टूडियो देखने का, यहाँ पर बात करने का, तो जल्दी आइए, आपसे बातें करते हैं यहाँ पर ढेर सारी। फिलहाल जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाए सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरशे पंकज को। और भाई देखिए, हमारे शोज में तो यहाँ पर आपसे हमारी ढेर सारी बातें होती रहती हैं। हमारे पास जितना भी समय होता है उस समय में हम कोशिश करते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करने की, आपकी फरमाइशों को पूरा करने की, या आपकी कोई बात जो आप हमें बताते हैं उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाने की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शो हमारा पूरा हो जाता है और आपकी बात अधूरी रह जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, शो से पहले या शो के बाद में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़कर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पर और हम आपको मिलते हैं फेसबुक यानी कि मेटा पर भी। तो वहां पर अभी तक आप कनेक्ट नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप सोशल हैंडल्स यूज करते हैं। तो सोशल हैंडल्स से जब आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका और हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहेगा शो के बाद भी और शो के पहले भी। तो अभी तक कनेक्ट नहीं है सो कनेक्ट हो जाइए और बातें कीजिए, कुछ हमें बताइए, कुछ हमें सजेस्ट कीजिए हमारे शो से जुड़ा हुआ। बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: Manchester.
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
3: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सर आपका KYC अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये OTP बताइए। क्या आपके पास भी ऐसी कॉल आई है? रुकिए, ये बैंक नहीं फ्रॉड है। KYC अपडेट करने के नाम पर डाकू अब आपके घर नहीं आपके फोन पर आते हैं। एक गलती और आपका बैंक खाता साफ। पहली बात, बैंक कभी भी फोन पर OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरी और जरूरी बात, कॉल काट कर सीधा अपने बैंक ब्रांच से बात करें। आपकी सतर्कता ही आपकी कमाई को सुरक्षित रखेगी। साइबर फ्रॉड से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: हर चेहरे में तेरा अक्स नजर आता, क्या कहें तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता।
2: परदीप सोनू।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए, फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: दिल के आईने में सिर्फ तुम्हारा दीदार किया है, तुम सोच न सको उतना तुम्हें प्यार किया है।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: ジオカル。
1: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज।

सर आपका KYC अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये OTP बताइए। क्या आपके पास भी ऐसी कॉल आई है? रुकिए, ये बैंक नहीं फ्रॉड है। KYC अपडेट करने के नाम पर डाकू अब आपके घर नहीं आपके फोन पर आते हैं। एक गलती और आपका बैंक खाता साफ। पहली बात, बैंक कभी भी फोन पर OTP पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरी और जरूरी बात, कॉल काट कर सीधा अपने बैंक ब्रांच से बात करें। आपकी सतर्कता ही आपकी कमाई को सुरक्षित रखेगी। साइबर फ्रॉड से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है, इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन।

0: therapy, all type of complex cancer surgery, hormonal therapy. To know more, call now 9639010313.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice?

0: then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।